0: पेरिस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા દેશભક્તિ ગીત. આપે ટ્યુન કર્યું છે આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર. શ્રોતા મિત્રો, બરાબર 8 વાગે હિન્દીમાં તેમજ 8:15 અંગ્રેજીમાં સમાચાર દિલ્હીથી રિલે કરીશું.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे. भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे. केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए. पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया. पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी. और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की.
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत

0: रूप से चर्चा की, भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने

0: आश्वासन दिया है कि जल्द ही और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय।

0: उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the

0: principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज,

0: सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अबासी।
1: और ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की
1: जी।
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं
1: जी।
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट
1: जी।
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत
0: जी।
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है
1: जी।
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है
1: जी। हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है
0: जी। शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
1: जी।
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
1: जी।
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया।

0: तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक

0: जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे।

0: मोर ताता थैया नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर ताता थैया नाचे मोर भई नाचे मोर रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
5: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
6: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
7: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
6: हाँ।
7: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
6: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
7: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
6: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
7: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
7: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं, चल।
5: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
9: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
6: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
7: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
5: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
7: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
6: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
5: वो उसे काटने लगे।

0: के।
1: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: हमना जाप सामने रहता NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું। શ્રોતા મિત્રો, સમય છે આપના પ્રિય કાર્યક્રમ સવારે સવારેનો। આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ છે। ચા નામ સાંભળતા જ અમદાવાદીઓ જ નહીં, ગુજરાતીઓ જ નહીં પણ આખા ભારતમાં સૌના ચહેરા પર એક ચમક આવી જાય છે। ચા આજે એક ગ્લોબલ પીણું છે પણ આપણા માટે ચા એક કપમાં સમાયેલી સંસ્કૃતિ અને સ્ફૂર્તિ છે। ચા ફક્ત પીણું નથી પણ આપણા રોજિંદા જીવનનો લય છે। સવારની ઊંઘ ઉડાડવાથી લઈને સાંજનો થાક ઉતારવા સુધી ગુજરાતીઓ માટે ચા પાણી એટલે હૂંફ, મહેમાનગતિ અને ચર્ચાનો પર્યાય। એમાંય મિત્રોની સંગત અને ચાની રંગત હોય તો કંઈક આવું ગાવાનું મન થાય।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો. હમણાં જ આપે સાંભળ્યું ભાગ્યેશ ઝાનું નીરચના, સોલી કાપડિયા અને નિશા ઉપાધ્યાયના સ્વરમાં પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. શ્રોતા મિત્રો, હવે સમય છે કાર્યક્રમ હિન્દી ફિલ્મ સંગીતનો. સૌ પ્રથમ સાંભળીએ અરિજિત સિંઘને શ્રેયસ પુરાણિકના સંગીતમાં. ફિલ્મનું નામ છે એનિમલ.

0: मैं वैसे औपचारिक जिसको तालीम कहते हैं प्रत्यक्ष थोड़ी सी देरी से शुरू हो गई, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक था
1: जी
0: हमारे बहन भाइयों में, और मैं 11वीं कक्षा के समर हॉलीडेज में पापा ने सबसे पहले मुझे तानपुरा पकड़ाया, और शिस्ता ये था कि सुबह 2:30 बजे जगाते, और शुरुआत के 8-9 दिन तो मैं रो के वापस चला गया, क्योंकि मुझे मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी
1: और आपको पढ़ाई पसंद थी, ये नहीं करना था।
0: जी। और सभी बहन भाई, मेरी माताजी सो रही हैं और मुझे अकेले को जगा रहे हैं,
1: जी
0: तो बाद में उस 16-17 दिन तक मेरी माताजी साथ में बैठी जस हौसला बढ़ाने के लिए। और फिर पापा ने एक दिन कहा कि मेरी माताजी का नाम दुर्गा,
1: जी
0: ही ऑर्डर हर कि यू गो, शिस्त जहां है,
1: हाँ
0: अनुशासन जहां है, वहां लाड़ प्यार
1: लाड़
0: नहीं।
1: प्यार नहीं।
0: बड़े सख्त गुरु रहे।
1: एक माता का हृदय होता है ना, हमेशा के स्ट्रिक्ट कैसे रहा जाए वो पापा को पता है, पर माता जी के लिए तो बेटा ऐसा है कि पैम्पर ही करना है।
0: वाकई,
1: हाँ
0: लेकिन फिर माँ ने ये मुझे समझाया कि बेटा तुमको गाना अच्छा लगता है ना, और तुम कहते हो ना मुझे आमिर खान साहब जैसे सुर लगाने हैं, तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा।
1: जी
0: फिर निरंतर 5.5 वर्ष तक
1: क्या बात है।
0: सुबह की स्वर अभ्यास की तालीम वो जारी रही। बाद में पापा रिलैक्सिंग चेयर में बाहर बैठते थे मेरे कमरे के, बाहर से निगरानी रखते थे, तो ये सतत निरंतर चालू था।
1: ओके पंडित जी, हर घराने की एक अलग गायकी होती है। आप अपने घराने के गायन शैली जो है लयकारी और बंदिश के दृष्टिकोण को एक वाक्य में कैसे डिफाइन कर सकते
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत
1: हैं?
0: ये एक उपासना का माध्यम कहा गया है। अब ये बात अलग है कि इसको करने वाले, उसको समझने वाले और निरंतर प्रयासरत बाकी कलाकार भी इसको कमर्शियल रूप दे दिया, लेकिन ये रोजमर्रा जिंदगी का और जिंदगी चलाने का साधन नहीं हो सकता है, अर्थार्जन का साधन नहीं हो सकता है। संगीत 3 प्रकार का मैं मानता हूं। एक, श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए जो संगीत किया जाता है वो, दूसरा खुद के लिए गाया बजाया जाने वाला संगीत, और तीसरा खुद के लिए और अनसीन फोर्स अगर आप मानते हैं।
1: जो इनर फीलिंग्स आता है।
0: हाँ, तो उसको हर चीज एड्रेस करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला संगीत, और वो तीसरे प्रकार का जो संगीत है, वो जो कल्पना है, उसका अनुसरण आमिर खान साहब की गायकी में प्रतीत होता है, जो मुझे बहुत भाया। और बचपन से हुआ ये कि मैं पूना में, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, मैं थोड़ा सा गेम्स में भी आगे रहा, तो टेबल टेनिस में नेशनल्स खेला हूँ, सब जूनियर और जूनियर्स में। 11th स्टैंडर्ड में था, और मेरा जब तालीम एक्चुअली शुरू हुई तब मैं 8-8 घंटा शिवाजी स्टेडियम में जाता था, सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा। और एक दिन वो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के मेरे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के चौथी लेवल के एग्जाम, तो उसका रिजल्ट लेके मैं वापस आया घर, और पापा रियाज कर रहे थे। शाम का समय था तो पापा मारवा राग गा रहे थे।
1: अच्छा।
0: मैं टेबल पर, मेरी आई ने, माताजी ने बिठाया, मैं चला गया ना, आई वॉज इन टू टीयर्स, और निशब्द था। पापा फिर बाहर आए, और पापा ने देखा कि ये थोड़ा सा विचलित हुआ है, विचलित माने भाव विभोर
1: आउट
0: होते
1: ऑफ
0: हुए।
1: वे जा रहा है।
0: हाँ, बहुत सद्गदित हुआ था। फिर पापा ने यही पैटेड ऑन माय बैक, सर पे से हाथ घुमाया, और खान साहब की, आमिर खान साहब की मारवा और दरपाल दरबारी की पहली लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड
1: हाँ
0: वो
1: एलपी
0: चलाई।
1: और
0: हाँ,
1: वाह।
0: तब तो मैं इतना स्पंदन करके रोया

0: और वो अब आप उसको गहरी चोट समझ सकते हैं या मान सकते हैं या कुछ भी,
1: हाँ मतलब वो एक
0: लेकिन
1: टर्निंग
0: वो एक
1: पॉइंट है
0: हाँ और
1: आपकी लाइफ का।
0: चिरकालीन परिणाम कभी नहीं मिटने वाला,
1: जी।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी। और तब पापा ने ये नोट कर लिया था, भांप लिया था कि इसको शुरू से प्यार है।
1: जी
0: और तब फिर जैसा मैंने पहले कहा
1: हाँ
0: वो आगे का प्रवास शुरू हुआ।
1: शुरू हुआ। राइट।
0: खान साहब, मीर खान साहब ने ख्याल इस शब्द का सही सही अर्थ अपने गाने से उजागर किया। उनकी जो शैली थी वो बड़े गहराई युक्त आलाप, संगीतकार की प्रतिभा सबसे ज्यादा निखर के आती है वो आलापी से। तानकारी या लयकारी या सरगम या चमत्कृतिपूर्ण इस तरह की रचनाओं से नहीं। तो खान साहब ने ये बहुत जल्दी इस चीज का जायजा लिया उनकी कम उम्र में, और आलाप ही लगभग 2.5 सप्तक की, और
1: ओके
0: आवाज पर इस तरह की कमांड,
1: ओके
0: इस तरह का कंट्रोल कि तानपुरे में उनकी आवाज मिल जाए और सुनने वाले को एक डिटैचमेंट की फीलिंग आती जाए।
1: वाह।
0: तो ये कुछ खासियत आमिर खान साहब की गायकी की रही। जटिल सरगम ताने और संगीत चक्रधर नाम के ग्रंथ में 5020 अलग अलग अलंकार एक्सरसाइजेस के रूप में कहे गए हैं। उसमें से खान साहब ने लगभग 168 चुन के उसका अभ्यास किया, एंड ही हैड मास्टरी ओवर ऑल दिस। मैं ये इसमें मेरा गहरा विश्वास है कि गाने वाले को केवल आवाज का ठीक होना, आवाज का अच्छा होना या मधुर होना या तानकारी करना इतना इससे पूरा नहीं होता है, और भी चीजें इसमें हैं। साइमल्टेनियसली इट्स अ सेरेब्रल एक्टिविटी आल्सो। और फिर आवाज अच्छा होना, मैं स्टूडेंट्स को विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूं कि ईश्वर ने शरीर की रचना की तब सबसे ऊपर ब्रेन को रखा, नीचे गला, कंठ, स्वरयंत्र, उसके नीचे हाथ,
1: जी
0: और सबसे नीचे जहां से आपकी भावनाओं का उद्गम है ऐसा हम लोग कहते हैं वो सोल या हृदय,
1: जी
0: वो जो स्थान है। अब आपके स्वरों में
1: जी
0: किसी भी रचना के साथ आप अपने आप को अगर जोड़ देते हैं गाने बजाने के लिए, तो आपके स्वरों में अगर उतनी तीव्रता नहीं होगी, वो इंटेंसिटी नहीं होगी, ये कब होगा? जब तीनों, आपका दिमाग, आपका गला और आपके इमोटिव कंटेंट्स, फीलिंग्स, भावना,
1: जी
0: ये साथ में नहीं चलेंगे सिंक्रोनाइज्ड वे में, तब तक वो प्रभावी गाना बजाना नहीं होगा, ऐसे मैं मानता हूं।
1: जी
0: और इसका पुरस्कार आमिर खान साहब ने किया।
1: ओके
0: तब तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा, क्योंकि तब जलद गायकी, चमत्कृतिपूर्ण गायकी,
1: जी
0: लोगों को आकृष्ट करने के लिए, राजा महाराजाओं का पैटर्नेज खत्म हो जाने के बाद
1: जी
0: धीरे धीरे धीरे धीरे लोग
1: हाँ
0: बाहर गाने बजाने लगे थे
1: जी
0: रंगमंचों पर। वैसे शास्त्रीय संगीत ये रंगमंचों पर गाने की विधान नहीं है,
1: नहीं
0: ऐसे मैं
1: है।
0: मानता हूं।
1: हाँ
0: चेंबर म्यूजिक हैज
1: हाँ
0: प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
1: जी
0: इन प्रोपोगेटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉपुलराइजिंग इट।
1: ओके
0: तो खान साहब ने बहुत लगभग अपनी सारी जिंदगी में कम से कम 2500 से 3000 महफिलों में गाया हुआ है,
1: ओ
0: और केवल कलकत्ता नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहर, यूरोप,
1: हाँ
0: अमेरिका और अफगानिस्तान बार बार जाया करते थे। अफगान नरेश को उनका गाना बहुत पसंद था।
1: जी
0: इस हिसाब से इस गायकी का तब जो एक नया रूप प्राप्त हुआ गायकी को, आमिर खान साहब के इस कंट्रीब्यूशन की वजह से एक अनोखा और एक वर्ग आमिर खान साहब को मानने वाला अलग पैदा होता रहा।
1: जी
0: गायक वादकों में जो गंभीर प्रकार का संगीत करते हैं, संगीत सभी अच्छा ही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सीरियसनेस ऑफ म्यूजिक, सीरियसनेस ऑफ ईच नोट, सिस्टमेटिक इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ईच नोट,

0: और उस स्वर को अलग अलग कितने एंगल्स से आप देख सकते हैं, ये जो नजर आमिर खान साहब ने दी
1: जी।
0: वो अलापी में उन्होंने ढाली और तानों में भी।
1: ओके।
0: अच्छा, ये सब करते हुए कभी कर्ता भाव, ये कभी सुनने वाले के प्रति इतना हो, इसका भी ध्यान आमिर खान साहब ने रखा, जो बहुत आगे की स्टेज है, से मैं मानता हूं।
1: बिल्कुल। तो यू टुक अस टू अ लॉन्ग जर्नी, थैंक यू। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस गौरवशाली यात्रा में आपका योगदान एक टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में रहा है। आकाशवाणी अहमदाबाद के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है, तो आप किस तरह याद करते हैं इस जुड़ाव को, और इस मंच ने आपकी कला को किस प्रकार आकार दिया?
0: आकाशवाणी मेरे जैसे साधक में कहता हूं खुद को, संगीत की साधना में रत अनेक कलाकारों को बहुत बड़ा बनाया। आज मैं जो कुछ हूं
1: जी,
0: वो केवल आकाशवाणी की वजह से हूं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसार प्रचार में और इसको राजमान्यता देने के लिए आकाशवाणी का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सहभाग है, वो अमिट है, अनपैरेलल है।
1: यस।
0: आज शास्त्रीय संगीत जो जिंदा है हिंदुस्तान में, वो केवल आकाशवाणी की वजह से, ये भूलना नहीं चाहिए। अब ये एक बहुत जिम्मेवारी सिखाने वाला माध्यम है
1: जी।
0: आप आवाज के जरिए सबको विदित कर रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी के समाज से जुड़े हुए सारे वर्गों में, सारे क्षेत्रों को आकाशवाणी अपने सारे दिन के कार्यक्रमों की सूची में ढाल देता है
1: जी।
0: आप शुरुआत भक्ति संगीत से करें, अंत शास्त्रीय संगीत तक,
1: यस,
0: इसमें लेबर प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स, विज्ञान से जुड़ी चीजें, विज्ञान के पर बेस जो कई प्रोग्राम्स हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़े,
1: खेल जगत भी आ जाता है,
0: खेल जगत आ जाता है, माने एक भी क्षेत्र अछूता नहीं है
1: जी।
0: और अगर आप रेडियो में आज भी आकाशवाणी की न्यूज अगर सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो आवाज की जो गंभीरता है, यू स्टार्ट इमीडिएटली विजुअलाइजिंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड, यू आर लिसनिंग टू। सो ये आवाज का सख्त माध्यम आकाशवाणी में इसका असाधारण महत्व है। आकाशवाणी आपको अनुशासन सिखाता है, आकाशवाणी आपको संस्कारित करता है
1: जी।
0: और मैं धन्यवाद करता हूं कि, और सद्भागी रहा कि आकाशवाणी के साथ इतना लंबा जुड़ाव मेरा सन 1992 से 2025 तक, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं।
1: तो पंडित जी, आपका पहला जो आपने यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया होगा आकाशवाणी के स्टूडियो में, वो आपको याद है?
0: वैसे इसके पहले मैं आकाशवाणी के ही अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता होती है, जो राष्ट्रीय कक्षा की, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है और बड़ी मान्यता है उसको, और उसमें दो ही क्रमांक दिए जाते हैं, पहला और दूसरा, तीसरा होता नहीं है। और अगर दूसरे के लायक है तो प्रतिभागी को दूसरा ही स्थान दिया जाता है, पहला नहीं दिया जाता है, वो रिक्त रखते हैं। तो मैं 1985 इंटरनेशनल यूथ ईयर, उसमें आकाशवाणी के शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिता में ख्याल गायन में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ मुझे, तब से मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर गाता रहा हूं।
1: तो हमारे श्रोताओं के लिए ख्याल गायन

वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो पंडित जी, जब आप कोई राग प्रस्तुत करते हैं तो आलाप, बंदिश, बोल

0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत है बढ़िया। तो पंडित जी जब आप कोई राग प्रस्तुत करते हैं तो आलाप, बंदिश, बोल, तान और लयकारी के बीच संतुलन कैसे तय करते हैं?
1: समय से समय मर्यादा अगर दी जाए तो मैं आपको समय के प्रपोर्शन में कहूं, आकाशवाणी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही
0: जी।
1: और आकाशवाणी आपको समय का सूक्ष्म ध्यान भी सिखाता है। इस लिहाज से कि अगर 29 मिनट का आइटम आपको गाना है तो आप 18-19 मिनट तक आलापी करेंगे, बाद में सिस्टमेटिक इम्प्रोवाइजेशन करते हुए थोड़े से चढ़ी लय के सरगम, लय की और ताल के अंकी, उसके बाद ताने और फिर मध्य लय या द्रुत की बंदिश शुरू हो जाती दुर्ख्याल। अब ये संयोजन
0: मतलब यही मैनेजमेंट कैसे करते हो, वही मुझे पूछना था। आप बात तो की पर लेकिन आप खुद इसको मैनेज कैसे करते हैं?
1: तय करके कोई चीज कभी होती नहीं है, ऑन द स्पर ऑफ दैट मोमेंट स्पॉन्टेनियसली हो जाता है।
0: ओके, तो कई संगीत प्रेमी आपके विलंबित ख्याल को बहुत पसंद करते हैं, आप एक बड़ा ख्याल की रचना कैसे करते हैं ताकि वह 45 मिनट तक से ज्यादा तक आप उसका विस्तार करते रहते हैं?
1: हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मंद्र सप्तक, गायक वादक को मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, इन तीनों सप्तकों में अपनी आवाज फ्लुएंटली चले, तरलता से चले और उसका परिणाम
0: जी
1: सुनने वाले की मानसिकता पर, मानस पटल पर चिरकाल टिकने वाला रहे, इसका ध्यान रखते हुए आवाज का रखाव, हर एक स्वर का लगाव, हर एक स्वर को संत गति से अलापी करते हुए और सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन, अनफोल्डिंग ऑफ रागा, राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए तार सप्तक तक जाके ज्यादा से ज्यादा तार गंधार तक आप पहुंच के आवाज को स्ट्रेन नहीं देते हुए, ये एक बहुत बड़ा विषय है वॉइस कल्चर, तो जिसका अनुसरण मुझे पापा ने ये शुरुआत में यही करवाया, तो उसके फलस्वरूप ऐसा है कि कम से कम 1.5-2.5 सप्तक तक आपकी आवाज बड़ी आसानी से आ जा सकती है।
0: क्या बात है,
1: अवरोह आरोह में।
0: ओके,
1: तो और फिर ताने अलग अलग प्रकार की, मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने म्यूजिक की मैंने किसी परीक्षा या विद्यालय में जाके कभी सीखा नहीं, इसलिए मुझे बेसिकली ये एक ट्रेनिंग का भाग था, शिक्षा का भाग था कि राग का आरोह अवरोह पापा बताते और फिर बंदिश कहते और बोलते कि अब चलो अपने आप सोचो और गाओ।
0: अच्छा,
1: इसके माने अभी पता चलते हैं बाद में कि वो ये चाहते थे कि मैं खुद सोचने लगूं राग को लेकर, राग की प्रकृति को लेकर। तो गायक वादक राग की प्रकृति को ही देखते हुए लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है
0: जी।
1: राग की प्रकृति को ही गाना होता है, तो उसको समझ के सोचते हुए, अनेकों बार सोचने के बाद उस समय राग की कौन सी प्रकृति आपके सामने आती है, कौन सा रूप आपके सामने आता है
0: जी।
1: वो गाने बजाने की विनम्र कोशिश हमेशा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है।
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ यू आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट रिगरस ट्रेनिंग।
1: आई डोंट थिंक मैं अभी ये पूरी तरह कर पाया हूं, लेकिन
0: फिर भी
1: प्रयास तो जारी है।
0: बिल्कुल। क्या आप अपनी बंदिशें खुद बनाते हैं? किसी बंदिश में ऐसी क्या बात होती है जो उसे पीढ़ियों तक गाए जाने लायक बनाती है?
1: नवरसों को ध्यान में रखते हुए भाग्यकारों ने संगीत की बंदिशें, रचनाएं की अलग अलग

0: रिदमिक साइकल्स
1: जी
0: ताल में निबद्ध, क्योंकि कंटेम्पलेटिव म्यूजिक का पुरस्कार और उसका अभ्यास मुझे बहुत भाया और रचनाओं में केवल श्रृंगार को मद्देनजर रखते हुए रचना ना हो, ईश्वर को समर्पित
1: जी,
0: उसमें फलसफा भी हो, फिलोसफी भी हो
1: जी,
0: और माइक्रोफोन के डायफ्राम को जो अक्षर है
1: जी,
0: वो जो ब्लास्ट करते हैं उनको टालने का कसब
1: ओके
0: रचनाओं में
1: ओके,
0: रचना आपकी ऐसी हो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की समाप्ति के पहले पेश है पंडित जी की ये एक बंदिश।

0: इसके शब्द हैं रसना मूक भई,
1: हाँ,
0: तुम्हारे गुणन को कैसे गाऊं। फिर अंतरा यह है कि सब दुखियन के
1: जी
0: दाता तुम हो,
1: जी
0: तव चरणन की आस लगी।
1: ओके,
0: ये बसंत मुखारी में कोशिश है, राग सुबह का राग है, दक्षिणात्य कर्नाटक संगीत में बेस्ड एक राग है बसंत मुखारी।
1: ओके,
0: उस पर बेस्ड बंदिश है ये।
1: पंडित जी, आपने अपने अनुभव, साधना और अमूल्य विचारों के माध्यम से आज हमें संगीत की गहराइयों से परिचित कराया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर संगत कार्यक्रम में हमने आप सांभळी रह्या था पंडित महेन्द्र टोके की मुलाकात। प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केन्द्रों पर करवामां आव्युं।

0: બરાબર 1 વાગે સાંભળીશ.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં જાગૃતિ શર્મા. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है. रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं. श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया.
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है. यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है. जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया. शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया.
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना है. नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए. जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है. इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब

0: जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में

0: योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK

0: में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार अब

मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: નમસ્કાર. 354.6 દશાંશ મીટર્સ એટલે કે 846 કિલો હર્ટ્સ પર આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, અત્યારે સાંજના 5 થવા આવ્યા છે. અમારી આજની સાંજની અને બીજી સભામાં આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બરાબર 5 વાગે આપ સાંભળશો દિલ્હીથી હિન્દીમાં સમાચાર.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह. भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई. एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है. बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं. LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन LPG का उत्पादन हो रहा है. नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर

0: मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रस्तुत छे अमारा हवे पछी प्रसारित थनारा कार्यक्रमोनी रूपरेखा तथा त्यारबाद पोलिस जाहिरात अंतर्गत केटली खोवायेल व्यक्तिओनी माहिती। श्रोता मित्रों, बराबर 5:10 आप संभरशो हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गुलमोहर। 5:45 सांभरशो लोक संगीत, जेमां चिमनलाल कुवरियाना कंठे प्राचीन भजनों तथा महेश सिंह चौहान द्वारा गवायेल केटलाक लोकगीतों आप सांभरशो। सांजे 6:30 युवा दोस्तों माटेनो खास कार्यक्रम युववाणी, जेमां राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आप वात सांभरशो तथा आयुर्वेदिक क्षेत्र में डॉक्टर तरीके कारकिर्दीना विकल्पो जे डॉक्टर चेतन प्रजापति साथे राजेश खराड़ी ने बातचीत आप सांभळी शकशो तथा हाँ फिल्म संगीत तो आप माणवाना छो। आ कार्यक्रम अंतर्गत सांजे 7 आप सांभळशो गैर फिल्मी गीतो। 7:22 गामनो छोरो, શ્રોતા મિત્રો રાત્રે 8 રજૂ કરીશું સુરમાધુરી કાર્યક્રમ। 8:30 ગુજરાતી ગીત, રાત્રે 9:15 અમારા અમદાવાદના પ્રાદેશિક સમાચાર વિભાગ દ્વારા પ્રસ્તુતિ આપ સાંભળશો। 9:30 આજ કે ફનકાર, રાત્રે 10 ગુજરાતી ગીત અને 10:30 ફિલ્મ સંગીત। તો શ્રોતા મિત્રો, આ હતી અમારા આજે હવે પછી પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની રૂપરેખા।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो हो।

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। सभ खां अवल अहम ख़बरूं। भारत ऐं इटलीअ विच में आर्थिक लाॻापन खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अङण खे वधीक तरक़ी याफ़्त बणण ते रासपो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अॼु नई दहलीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु ऊच सतही सलामती जाइज़ा बैठक कई। मर्कज़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे FAO एग्रीकोला मेडल सां नवाज़ण ते खुशी ज़ाहिर कई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी सरबराहीअ वारी काबीना जो विस्तार। मंत्रिमंडल में हाणे 4 महिलाउनि समेत कुल 33 मेंबर। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम 7:30 बजे अहमदाबाद जे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबिलो चेन्नई सुपर किंग्स सां थींदो। ख़बरूं तफ़सील सां ॿुधंदा। भारत ऐं इटलीअ वापारु सीड़प ऐं रसद सीरीज़ जी मज़बूतीअ वास्ते भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अङण खे वधीक तरक़ी याफ़्त करण ते रासपो ज़ाहिरु कयो। हिकु गॾियल बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐं इटलीअ जी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अङण ते सहकार जी पंहिंजी कौलबद्धता दोहराई। ॿिन्ही अॻवाननि भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अङण खे हिकु मुख्य राब्तो ऐं आर्थिक अङण ॿुधायो, जेको भारत विच ओभर ऐं यूरोप खे ॻंढे थो। प्रधानमंत्री इन ॻाल्हि खे

0: त ॻाल्हि ॿोल ऐं सिफारतकारी अॻियां वधण जी वाहिद वाट आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ चयो,
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
0: इटली जी प्रधानमंत्री चयो त उन्होंने खितन विच में आपसी जुड़ावा के मजबूत करण एक अहम अग्राई बनल है. हुन चयो त ॿई मुल्क इन अंगण जे विकास जी मज़बूतीअ सां पुठिभराई कनि था. इन विच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजनि मुल्कनि जी कामयाब यात्रा खां पोइ पंहिंजे मुल्क वापसि मोटियो आहे. श्री मोदी मुतहद अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ऐं इटलीअ जी यात्रा ते हो. मर्कज़ी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव अॼु नई दहलीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु हिकु आला सतही सलामती बैठक कई. बैठक जे दौरान इहा ॼाण साम्हूं आई आहे त रेलगाॾियुनि में वेझड़ में ई लॻल बाहि वारनि वाक्यनि जी शुरूआती जांच में असमाजिक अनासर शामिल आहिनि. वज़रात चयो त अहिड़नि वाक्यनि खे संजीदगीअ सां खंयो वियो आहे ऐं रेलवे सलामती अमलो RPF इन जी सरगर्म नमूने जांच करे रहियो आहे. सलामती जाइज़ा बैठक दौरान बहितर रिपोर्टिंग सिरिश्ते ज़रिए खुफ़िया ॼाण गॾु करण जे तंत्र खे मज़बूत करण ते ख़ासि बल ॾिनो वियो. ज़रई ऐं हारी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अॼु चयो त भारत ज़रई उत्पादन वधाए खाद खुराक सलामतीअ खे मज़बूत करे ऐं लखे हारियुनि जे जीवन में शफ़ी बदिलाउ आणे करे विश्व जे साम्हूं हिकु नओं मिसाल पेश कयो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे रोम में खाद खुराक ऐं ज़रई संगठन FAO एग्रीकोला मेडल सां नवाज़ण ते ख़ुशी ज़ाहिर कंदे श्री चौहान चयो त इहो एजाज़ नए भारत जे वधंदड़ मान सम्मान जी निशानी आहे. चौथो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन अफ्रीका जे कुझु हिसनि में ख़राब सिहत जी सूरतहाल खे ध्यान में रखंदे मुल्तवी कयो वियो आहे. इहो सम्मेलन 28-31 मई ताईं नई दिल्लीअ में थियणो हो. विदेश वज़रात ॿुधायो त भारत अफ्रीकी संघ जो अध्यक्ष ऐं अफ्रीकी संघ कमीशन विच में सलाह मसलियत खां पोइ इहो फ़ैसिलो वरितो वियो. तमिलनाडु में जोसेफ विजय जे सरबराईअ वारी सरकार अॼु पंहिंजे मंत्रिमंडल जो विस्तार कयो. मंत्रिमंडल में 23 नवां मंत्री शामिल कया विया. इन में कांग्रेस पार्टीअ जा 2 मेंबर बि शामिल आहिनि. इन वधाव सां गॾु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय खे मिलाए मंत्रिमंडल में कुल अदद वधी 32 थियो आहे. इन नई वधायल काबीना में 4 महिला मंत्री बि शामिल आहिनि. अॼु सुबुह लोकभवन में मुंतज़िम हिकु समारोह में गवर्नर विश्वनाथ अर्लेकर नवनि मंत्रियुनि खे पद ऐं राज़दारीअ जो हलफ़ खणायो. हिकु अहिवाल नुमाईंदे खां
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है. इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज.
0: ही खबरों तमा आकाशवाणी ता बुधी रहा आहे. ही खबरों तमा असा जी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते बुधी सको था. वधिक खबरों जे लाए तमा असा जी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था. ओलह बंगाल सरकार राज्य जे सभिनी मदरसनि में सुबुह जी प्रार्थना सभा दौरान वंदे मातरम गीत तुर्त असराइते नमूने लाज़मी कयो आहे. इहो हुकुम मदरसा तहलीम डायरेक्टोरेट द्वारा जारी कयो वियो आहे. अमलदारनि ॿुधायो त इन क़दम जो मक़सदु विभाग जे तहत ईंदड़ सभिनी तहलीमी इदारनि में प्रार्थना सभा जे अमल में हिकु जहिड़ाई आणणु आहे. सिहत शेवा डायरेक्टोरेट जनरल इबोला मर्ज़ खां मुतासिर मुल्कनि खां ईंदड़ ऐं गुज़रंदड़ यात्रियुनि वास्ते हिकु एडवाइज़री ज़ाहिर कई आहे. उन मुताबिक़ कांगो जमूरी गणराज्य, युगांडा ऐं ॾखण सूडान समेत मुतासिर मुल्कनि

0: जी यात्रा कयल यात्रियुनि खे बुखार, मथे में सूर, नसुनि में सूर, बिना कंहिं सबबु खून वहणु ऐं उल्टीअ जहिड़ा आसार हुजण ते तुर्त तबीबी मदद वठण जो अर्ज़ु कयो आहे। वणज ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त आलमी बुहरान विच में भारत जो सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4 खां वधी 6.5% थियो आहे, जेको 140 करोड़ भारतीयनि जी सलाहियत खे ॾेखारे थो। नई दिल्लीअ में मुंतज़िम अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सालियाने क़ियादत इजलास खे ख़िताब कंदे हुन इहा ॻाल्हि चई। वणज ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त दुनिया भारत खे हिकु विश्वास जोॻे भाईवार जे रूप में ॾिसी रही आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ जे 5 मुल्कनि जे दौरे जे बारे में नई दिल्लीअ में अख़बार नवीसुनि खे ख़िताब कंदे श्री गोयल चयो त इन यात्रा सां समाज जे हर तबिके खे फ़ाइदो मिलंदो। अॼु अंतर्राष्ट्रीय चांहि ॾींहुं आहे। इहो ॾींहुं मुतहद राष्ट्र जे खाध खोराक ऐं ज़रई संगठन द्वारा मल्हायो वेंदो आहे। हिन साल जो विषय आहे चांहि जे इस्तेमाल खे बरक़रार रखणु ऐं जुड़ियल बिरादरियुनि जी पुठिभराई करणु। हिन ॾींहं जो मक़सदु आहे महिनती चांहि पोरियतनि खे हुननि जो हक़ ॾियणु ऐं हुननि जे ज़िंदगीअ खे बहितर बणाइणु। हिकु रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है।
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अॼु 125 पॉइंटूं घटी करे 75,183 ते बंदि थियो। होॾां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी बि 4 पॉइंटूं घटिजी करे 23,655 ते बंदि थियो। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम अहमदाबाद जे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ऐं चेन्नई सुपर किंग्स जो मुक़ाबिलो थींदो। इहा मैच अॼु शाम 7:30 बजे खां शुरू थींदी। आख़िर में अहम ख़बरुनि ते नज़र विझंदासीं। भारत ऐं इटलीअ विच में आर्थिक लाॻापनि खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ भारत विच ओभर यूरोप आर्थिक अङण खे वधीक तरक़ी याफ़्त बणाइण ते रासपो। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव अॼु नई दिल्लीअ में फील्ड अमलदारनि सां गॾु उच सतही सलामती जाइज़ा बैठक कई। मर्कज़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ खे FAO एग्रीकोला मेडल सां नवाज़ण ते ख़ुशी ज़ाहिर कई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी सरबराहीअ वारी काबीना जो विस्तार। मंत्रिमंडल में हाणे 4 महिलाउनि समेत कुल 33 मेंबर। IPL क्रिकेट में अॼु शाम 7:30 बजे अहमदाबाद जे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबिलो चेन्नई सुपर किंग्स सां थींदो। आकाशवाणी तां सिंधी समाचारनि जो इहो अंक ते समाप्त थियो। नमस्ते।
4: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા।
5: શું તમે તૈયાર છો હીટ સ્ટ્રોક થી બચવાની? ગરમીમાં લૂ લાગવાથી બચવા માટેના ખાસ પગલા: હીટ વેવ દરમિયાન બહાર નીકળવાનું ટાળવું, આખું શરીર અને માથું ઢંકાય તેવી રીતે સફેદ સુતરાઉ કપડાં પહેરવા, ટોપી, ચશ્મા, છત્રીનો ઉપયોગ કરવો, વારંવાર પાણી પીવું, લીંબુ શરબત, મોળી છાશ, નારિયેળનું પાણી તથા ORS પુષ્કળ પ્રમાણમાં પીવું। લૂ લાગવાના લક્ષણો: માથું દુખવું, પગની પેઢીઓમાં દુખાવો થવો, શરીરનું તાપમાન વધી જવું, ખૂબ તરસ લાગવી, ઉલટી થવી, ઉબકા આવવા, ચક્કર આવવા, આંખે અંધારા આવવા, બેભાન થઈ જવું, અતિ ગંભીર કિસ્સામાં ખેંચ આવવી। હીટવેવની ચેતવણીના દિવસોમાં બપોરે 2 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી બહાર નીકળવાનું ટાળવું। લૂ લાગવાની અસર જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો કે સરકારી દવાખાનાનો સંપર્ક કરવો। ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા જનહિત।
6: છેલ્લા 21 વર્ષથી આપણા પ્રાકૃતિક ખજાના વિશે માહિતગાર કરતો કાર્યક્રમ હરિયાળું ગુજરાત આવી રહ્યો છે હવે નવા સ્વરૂપે।
7: દર રવિવારે રાત્રે 8 વાગે હરિયાળું ગુજરાત।
8: આ ઉનાળામાં સુરક્ષા સૂચનોનું પાલન કરો અને લૂથી બચો।
9: હીટવેવ
8: એટલે કે લૂ થી બચવા બપોરે 2-4 વાગ્યા સુધી બહાર નીકળવું નહીં અને માથું સુતરાઉ સફેદ કાપડથી ઢાંકવું તથા ખુલ્લા કપડાં પહેરવા. બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને વડીલોએ તડકામાં વિશેષ કાળજી લેવી. પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી, લીંબુ પાણી અને છાશ જેવા પીણા પીવા.

हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो।

0: जनहित में।
1: कार्यक्रम में हवे सांभळीए निगम उपाध्याय अने अमी कोटीचाना कंठे सुखदेव पंड्यानी आ रचना।

0: શ્રોતા મિત્રો, આ સાથે જ ગુજરાતી ગીતોનો કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. બરાબર 8:45 આપ સાંભળશો સમાચાર સંધ્યા અને ત્યારબાદ News@9.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર સંધ્યા કે સાથ મેં મુકેશ કુમાર. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी. कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया. सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया. केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया. भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए. यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई. संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई.
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की.
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है. इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है. प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है ये एफ

0: उन्हें कहा है भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की

0: कोई खबर नहीं मिली है।
1: रिपोर्टेड इन पास 72 आवर्स।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का

0: નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આકાશવાણીના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ભારતનો સૌપ્રથમ સેમી હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ હવે આપણા ગુજરાતમાં સાકાર થવા જઈ રહ્યો છે. અમદાવાદથી ધોલેરાને જોડતા આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ વિશે સત્તાવાર અને વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપણી સાથે ખાસ જોડાયા છે પશ્ચિમ રેલવે અમદાવાદના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર શ્રી વેદ પ્રકાશ. આ નવા અને અત્યાધુનિક પ્રોજેક્ટથી મુસાફરોને શું નવી સુવિધાઓ મળશે, ચાલો જાણીએ સીધું જ તેમની પાસેથી. વેદ પ્રકાશજી, આકાશવાણી પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.
1: નમસ્કાર. નમસ્કાર
0: સર. 20,667 કરોડ કી લાગત સે અહેમદાબાદ ઓર ધોલેરા સેમી હાઈ સ્પીડ ડબલ લાઇન પ્રોજેક્ટ કો કેબિનેટ કી મંજૂરી મિલી હૈ. પશ્ચિમ રેલવે ઓર વિશેષ રૂપ સે અહેમદાબાદ મંડળ કે લિયે યે પ્રોજેક્ટ કિતના ઐતિહાસિક ઓર મહત્વપૂર્ણ હૈ.
1: યે પ્રોજેક્ટ પૂરે વર્લ્ડ કે લિયે બહોત હી ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, ક્યોંકિ યે ધોલેરા જો કિ સેમિકોન ઇન્ડસ્ટ્રી કા હબ બનને વાલા હૈ, ઉસકો જોડ રહા હૈ અહેમદાબાદ સે, ઉસકો જોડ રહા હૈ સાબરમતી સે, ઇસકે સાથ સાથ पैसेंजर से भी जोड़ रहा है और गुड्स से भी जोड़ रहा है, मतलब फ्रेट से भी जोड़ रहा है. तो मालगाड़ियाँ भी इसमें जाएंगी और पैसेंजर्स भी जाएगा. ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ब्रॉडगेज सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है. दूसरा कि ये ऐतिहासिक है इस मायने में कि पहली बार इंडिया में, भारत में 220 के स्पीड से गाड़ी को चलाने की बात है. जो नॉर्मल स्पीड अभी ट्रेनों की होती है, हम मैक्सिमम जो ब्रॉडगेज में ट्रेन को चलाते हैं 180 के डिजाइन स्पीड में, 160 के स्पीड पे मैक्सिमम में चलती है, बहुत एक सेक्शन में चल रही है. बाकी राजधानी 130 पे चलती है, मेल एक्सप्रेस 110 पे चलती है, पैसेंजर्स 100 और इस तरह के नेटवर्क में इजाफा 160 से पहली बार 220. तो ये एक बड़ा जंप है इंडियन रेलवे के लिए, भारतीय रेल के लिए, फॉर इंडिया के लिए.
0: जी, ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है. एक आम ट्रेन और हाल ही में चल रही वंदे भारत ट्रेन की तुलना में ये सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट किस तरह से अलग और खास होगा?
1: जैसा मैंने आपको बताया कि साबरमती से अगर कोई पैसेंजर्स सेमिकॉन के लिए जाना चाहता है तो 48 मिनट में आसानी से पहुंच जाएगा. यही काम वो सारखेज रीजन से करता है तो वो 34 मिनट में पहुंच जाएगा. तो आप अहमदाबाद के हो या दिल्ली के हो या मुंबई के हो, हर जगह आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में घंटा, दो घंटा, डेढ़ घंटा ऐसे समय लगता है. पर यहाँ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी काम करने वाले लोग जो अगर सेमिकॉन से जुड़े हैं या उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं या वहाँ घूमना जाना चाहते हैं या लोकल जो हमारा म्यूजियम है वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वो आसानी से इतने कम समय में, घंटे भर के कम समय में जा सकते हैं. और ये केवल इतना ही नहीं है क्योंकि साबरमती जो है वो हब है, मेट्रोज का हब है. अब जो अहमदाबाद मेट्रो है उसके 3 स्टेशंस यहाँ पे इस सेक्शन में आ रहे हैं. साबरमती में वो जोड़ रहा है, वो बस्त्रापुर में जोड़ रहा है और वो गांधीग्राम में जोड़ रहा है. इसके अलावा बुलेट ट्रेन जिसका

0: शुरुआत साबरमती से होगा, तो बुलेट ट्रेन से कोई भी पैसेंजर वो 2 घंटा 4 मिनट में मुंबई जा रहा है, और यहाँ से साबरमती से फिर धोलेरा अगले 48 मिनट में चला जाएगा। तो ये जो अचीवमेंट है पैसेंजर्स का, 2 घंटे 3 घंटे में बॉम्बे से आसानी से लोग जा सकते हैं धोलेरा ट्रेन से ही। फ्लाइट की अलग सुविधा, धोलेरा एरिया में लोग वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से धोलेरा में भी आ सकते हैं, अहमदाबाद में भी आ सकते हैं। धोलेरा में आए तो सीधे जा सकते हैं, अहमदाबाद में आकर के फिर हमारे ये सेमी हाई स्पीड पकड़ करके सेक्शन से जा सकते हैं।
1: जी सर। શ્રોતા મિત્રો, અમદાવાદ ધોલેરા વચ્ચે સાકાર થઈ રહેલા આ ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ વિશે માનનીય કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજીએ પણ આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટના વિઝન અને ભવિષ્યની યોજનાઓ અંગે વિશેષ માહિતી આપી છે. તો ચાલો સાંભળીએ આ પ્રોજેક્ટ અંગે શું કહી રહ્યા છે રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ.
2: આપ રેલવે મેપ પર દેખો તો કન્વેન્શનલી 110 KMPH કી ટ્રેન્સ હોતી થી હાઈએસ્ટ, ફિર 130 કી આને લગી, फिर वंदे भारत बनी 180 KMPH की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 KMPH की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 KMPH की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, और जो बड़े शहर है, बहुत बड़े शहर है 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले, उनको 350 KMPH की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहां से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुंच सकेंगे। अच्छी बात यह हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग अबाउट 10 लाख ट्रीज।
1: माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी खास और नई भारतीय तकनीक का उपयोग होने जा रहा है सर?
0: जैसा हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सर ने कहा, पहला तो ब्रॉडगेज का वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड है, जितने भी वर्ल्ड के सेमी हाई स्पीड है वो स्टैंडर्ड गेज के। दूसरा कि इसमें पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रैक है वो एलिवेटेड 55% के एरिया में है, बाकी के पोजिशन में वो या तो ट्रैक पे है या लैंड पे है या कटिंग में। तीसरा कि ये पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क है जिसमें आप फ्रेट और कोचिंग मतलब पैसेंजर्स साथ में जा सकते हैं। और चौथा, क्योंकि इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम लग रहा है, वर्ल्ड में कहीं भी सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो या तो जापानीज टेक्नोलॉजी का लगे या तो फिर आप ETCS का लगे, मतलब यूरोपियन टेक्नोलॉजी का लगे, लेकिन ये पहली बार अपना डेवलप किया हुआ कवच सिस्टम, कवच 5.0 वो लगने जा रहा है।
1: जी सर, ये प्रोजेक्ट देश भर के भविष्य के सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए एक पायनियर या रेफरेंस मॉडल बनने वाला है। एक मॉडल के रूप में इस प्रोजेक्ट की कौन सी विशेषताएं अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी?
0: ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड नेटवर्क जो कि ब्रॉडगेज में बन रहा है और वर्ल्ड का भी पहला है। तो अब जैसे मेरठ का जो हमारा RRTS बना, उसमें इंडियन रेलवे की ट्रेनें नहीं जा सकती क्योंकि वो स्टैंडर्ड गेज की। ये ऐसा नेटवर्क है कि कहीं से कहीं भी इसको जोड़ा जा सकता है। दिल्ली से आने वाली ट्रेन को भी सेमी हाई स्पीड में हम ले करके आसानी से धोलेरा जा सकते हैं। इसी तरह से जो गुड्स इसमें जो क्रिएट हो रहा है वो उसको लेकर के हम रेलवे के नेटवर्क में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सचमुच ही रियल मायने में बहुत ही इम्पावरिंग है पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया का जो डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है एक शहर का दूसरे शहर से, उसको कम करने में ये मील का पत्थर साबित होगा।
1: जी सर, ये 134 किलोमीटर लंबा नेटवर्क अहमदाबाद, धोलेरा SIR, धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगा। इस कनेक्टिविटी से दैनिक यात्रियों और पर्यटकों को समय और सुविधा के लिहाज कितना फायदा होगा?
0: देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो समय है वो धोलेरा से सीधे, धोलेरा SIR से सीधे साबरमती में आने का समय केवल केवल 48 मिनट। अगर आपको वहां से एयरपोर्ट भी पकड़ना हो धोलेरा SIR से, तो आप आसानी से वहां से आइए।

0: खेज में उतरिए या गांधीग्राम में उतरिए और फिर 15 मिनट के अंदर वहां से आप एयरपोर्ट को भी जा सकते हैं। तो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाना हो तो या तो सारखेज, गांधीग्राम, वस्त्रापुर, साबरमती में आकर के दूसरी जगह ट्रेनों को पकड़ सकते हैं या वहां से बुलेट ट्रेन पकड़ करके फिर आप डिफरेंट डेस्टिनेशन को जा सकते हैं या अहमदाबाद एयरपोर्ट आकर के भी कहीं जा सकते हैं या बस को पकड़ सकते हैं। तो ये एक यूनिक मॉडल बनाया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा, जिसमें वर्ल्ड इसका लोहा मानेगा क्योंकि ये होगा वर्ल्ड का पहला सेमी हाई स्पीड ब्रॉडगेज नेटवर्क।
1: जी सर, फिलहाल अहमदाबाद से धौलेरा जाने में सड़क मार्ग से काफी समय लगता है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लोग सुबह जाकर शाम को वापस लौट सके, इसके लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और स्पीड की क्या योजना रहेगी सर?
0: इसमें जो भी ट्रेनें चलेंगी वो 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी, स्टॉपेजेस इसी तरह से डिसाइड किए जाएंगे और दोनों ट्रेन जो कि धौलेरा एसआईआर को जाएगी या कुछ ट्रेन जो कि लोथल के पर्यटन स्थल को टच करेगी, ये इस तरह से बनाया जाएगा कि लोग सुबह जाएं वहां पे अपना काम कर पाएं या लोथल जो मैरीटाइम म्यूजियम है वहां पे जाकर के पर्यटन का फायदा ले पाएं, वहां पे घूमें और फिर आसानी से काम करके एसआईआर धौलेरा एसआईआर से या लोथल से पर्यटन में अपना अनुभव और ज्ञान वर्धन करके आसानी से लौट के चले आए।
1: जी सर, धौलेरा एसआईआर गुजरात का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी औद्योगिक प्रोजेक्ट है। ये नए रेलवे लाइन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मालगाड़ी और उद्योगों के विकास में कितना मददगार साबित होगा?
0: ये जो सेमीकॉन हब बनने वाला है, अगर एरिया के बेसिस पे देखें तो इसका एरिया सिंगापुर के एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। जो प्रोडक्ट तैयार होने वाले हैं और जो इंडस्ट्री आने वाली है, क्योंकि सेमीकॉन इंडस्ट्री के साथ उसके साथ 100-200 गैसेस, केमिकल्स और तमाम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक के इंडस्ट्री आती है, तो उसके लिए प्रोडक्ट को आना और प्रोडक्ट का जाना, और ये आना और जाना वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हो सकता है और इंडिया के किसी भी पार्ट से हो सकता है, और उसके लिए ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब आप देखो कि यहाँ से जो डिफरेंट पोर्ट्स है, मुद्रा पोर्ट 352 किलोमीटर, कांडला पोर्ट 305 किलोमीटर, पोरबंदर 312 किलोमीटर, भावनगर तो बगल में ही है 62 किलोमीटर। हाँ, और एक बात बता दूं कि जो अभी तक है ये बावलिया तक सैंक्शन हुआ है, उसके आगे 65 किलोमीटर का सर्वे का काम चल रहा है और वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा, उसके बाद रेलवे उसकी भी अप्रूवल लेगी और ये भावनगर भी जुड़ जाएगा। तो भावनगर से भी लोग आ सकते हैं धौलेरा में और साबरमती और अहमदाबाद से भी लोग आ सकते हैं। फिर मैं जैसे बता रहा था आपको हजीरा 310 किलोमीटर, तो वेरावल 291 किलोमीटर, तो ये पूरा का पूरा पोर्ट नेटवर्क, रेल से नेटवर्क पूरे इंडिया में, क्योंकि मौरैया में ये डीएफसी से जुड़ रहा है तो 100 के स्पीड से गुड्स चलेगी इस स्ट्रक्चर पे और फिर डीएफसी के स्ट्रक्चर पे 100 पे गुड्स चलेगी। तो आप सोचो कि जेएनपीटी जाना हो या यहाँ से तेजी से लुधियाना, दादरी या फिर ईस्टर्न डीएफसी के कॉरिडोर में होकर के सोनगर और इंडिया के कलकत्ता और किसी भी पार्ट में जाना हो तो बहुत तेजी से लोगों सामान को, मटेरियल को ले जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, तो पैसेंजर्स के लिए और गुड्स के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगा।
1: जी सर, 134 किलोमीटर के इस नए नेटवर्क को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण या अन्य कोई भौगोलिक या बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां है सर?
0: चुनौतियां नहीं है क्योंकि पहली बार इस तरह से किया गया, जब रोड बनाया जा रहा था एनएच का, ये धौलेरा एक्सप्रेस हाईवे, उसी समय ही ये अवधारणा की गई थी कि इसमें हाई स्पीड रेल नेटवर्क आएगा और रेलवे को उसमें बनाना है। तो 30 मीटर का ट्रैक जो है अलोंग द एनएच वो प्रोवाइडेड है और इसमें जो एरिया जो बचा है वो एरिया जहां जहां हम लिंक करने वाले हैं स्टेशन से, अभी के एग्जिस्टिंग स्टेशन से, वहां पे पड़ेगा और हमें लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग और कम्युनिकेशन कर रहे हैं और प्रोएक्टिव वे में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और भारतीय रेलवे काम कर रही है और सक्सेसफुली जल्दी ही काम पूरा करेगी।
1: जी सर, इस प्रोजेक्ट को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वर्तमान में अहमदाबाद डिवीजन द्वारा इसके एग्जीक्यूशन के लिए शुरुआती कदम क्या उठाए जा रहे हैं?
0: इसका जो नेटवर्क है इसमें लैंड एक्विजिशन के बाद इमीडिएटली हम पहले तो इसमें सीपीएम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट साथ साथ हो गया है। जिस दिन कैबिनेट में अप्रूवल मिला उसी दिन सीपीएम की एक पोस्टिंग हो गई। सीपीएम एक सीनियर लेवल के डच ऑफिसर को पोस्ट किया गया है। दूसरा कि इसके डिजाइन और ये एस्पेक्ट पे काम चल रहा है, कुछ डिजाइन के टेंडर को भी हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है, बाकी के लिए हम जल्दी जल्दी काम करेंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ये जो पूरा काम है वो हमारे भारतीय रेलवे के, वेस्टर्न रेलवे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
1: जी सर। अंत में अहमदाबाद

0: और गुजरात की जनता को इस विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट के संबंध में डीआरएम के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे?
1: मेरा संदेश ये होगा कि भारतीय रेलवे सक्षम है बड़े से बड़े चैलेंज को लेने के लिए, और अब ये सेमी हाई स्पीड नेटवर्क, जिससे कि वर्ल्ड का पहला ब्रॉडगेज नेटवर्क, वर्ल्ड का पहला ऐसा जो कि एलिवेटेड और ट्रैक लेवल पे है वैसा नेटवर्क, वर्ल्ड का पहला इंडियन सिग्नलिंग सिस्टम से लैस 5.0 नेटवर्क, और वर्ल्ड का पहला जिसमें कि फ्रेट और पैसेंजर दोनों साथ में चलता हो वैसा नेटवर्क, और वर्ल्ड का पहला इंडिया में जो कोचेज है उसके लिए भी वर्क ऑर्डर कर दिया गया है और जो ICF के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इन 5 फ्रंट के साथ, 5 नए आयाम के साथ भारतीय रेल वर्ल्ड को दिखाएगा कि इनमें क्या एबिलिटी है। थैंक यू।
0: ओके सर, धन्यवाद। तो श्रोता मित्रों, आ हता पश्चिम रेलवे अहमदाबाद ना डिविजन रेलवे मैनेजर श्री वेद प्रकाश, जेमने भारत नी प्रथम सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन एटले के अहमदाबाद धोलेरा

0: वर्ल्ड को दिखाएगा कि इनमें क्या एबिलिटी है। थैंक यू।
1: ओके सर, धन्यवाद। तो श्रोता मित्रों, आ हता पश्चिम रेलवे अमदावादना डिविजन रेलवे मैनेजर श्री वेद प्रकाश, जेमणे भारतनी प्रथम सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन एटले के अमदावाद धोलेरा प्रोजेक्ट अंगे खूब ज विस्तृत अने सचोट माहिती आपी। वेद प्रकाश जी, पोतानो कीमती समय फाड़वीने आकाशवाणी साथे जोड़ावा बदल, अमारा श्रोताओने आ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट थी माहितगार करवा बदल आपनो खूब खूब आभार। श्रोता मित्रों, आ साथे ज अमारो आ विशेष कार्यक्रम अहीं संपन्न थाय छे। हूँ छू करण सम्राट, हवे मने आपसो रजा अने आप सांभळता रहो आकाशवाणी। नमस्कार।
2: શ્રોતા મિત્રો, થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો આજ કે ફનકાર।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें

मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा, इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल, इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता मित्रों, कार्यक्रम में हवे सांभळीए साधना सरगमना कंठे उमाशंकर जोशी नी आ रचना।

0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों नु संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत ना 92% भौगोलिक विस्तार मा 99% जेटली वस्ती ने आवरी ले छे। देश ना ग्रामीण शहरी अने सरहदी विस्तारों मा 23 भाषाओं अने 182 जेटली बोलियों द्वारा राष्ट्रीय अने प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाड़ी रही छे। आधुनिक समय ने मान आपीने DTH मोबाइल एप्स अने विविध प्लेटफॉर्म पर 24 कलाक आपनी सेवा मा हाजर रहती भारतीय वारसो अने संस्कृति नु जतन करती आकाशवाणी ने आजे 90 वर्षे लाख लाख अभिनंदन।
1: શ્રોતા મિત્રો, આપે ટ્યુન કર્યું છે આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર અને આપ માણી રહ્યા છો ગુજરાતી ગેરફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ। કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ આરતી મુનશી અને અનાર કઠારિયાના કંઠે સુરેશ દલાલની આ રચના

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: હવે સાંભળીએ મન્ના ડે અને લતા મંગેશકરના યુગલ સ્વરમાં ચોરી ચોરી ફિલ્મનું આ ગીત।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता मित्रों, आ साथे ज फिल्म संगीत नो कार्यक्रम अहीं समाप्त थाय छे। प्रसारण आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा केन्द्र परथी करवामां आव्युं। થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો દિલ્હીથી હિન્દીમાં સમાચાર અને ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં સમાચાર।
2: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં પ્રશાંત કુમાર।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुभाष मेहता, यस तुन्ना शोभा मोदी,
1: ओ कौन मुनीश्वर,
0: हसमुख भावसार,
2: यामिनी
0: गोपी देसाई,
3: उपेक्षिता स्त्री नु दुख समझो छो अंशुमान,
0: हर्षक ठक्कर।
4: नाटक मेरी रोज ना लेखक विभूत शाह, निर्माण सहाय गोपाल मुदलियार, रजुआत रमेश भट्ट।